क्या बात है, यार कमाल आ सरदूल सिकंदर साहब ना म्यूजिक चलदिया ही सुकून दा जड़ा ना एक वाइब हुंदियां होनियां शुरू हो जांदियां। हाय हाय क्या बात है, क्या हाल है। 905-673-3337 ऐसा काम की गल मैं थोड़ा सुननी देनी अजय, क्योंकि पहला दस दी कि खूबसूरत शाम और खूबसूरत शाम के खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके जुड़ चुके हैं जी। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु, की हाल चाल है, ठीक ठाक हो, किदा जा रही है अभी खूबसूरत शाम, करिए गल बात फिर। चला दिए 905-673-3337 मैंने पता तुम सुनना चाहते हो भी की सरदूल सिकंदर साहब कहना चाहते हैं, हूँ सुना देने पक्का।

0: क्या बात है, क्या बात है शेरी भाई, चक्ते फटे। ओके एक यार बहुत ही कमाल दी एक बेडरूम दी अपार्टमेंट रेंट ली अवेलेबल है, नवी बनी बिल्डिंग है, लोकेशन बड़ी ढुकवी है, डंडास अते इजलिंगटन दे बिल्कुल कॉर्नर ते, 10 मिनट दे विच टोरंटो डाउनटाउन पहुंचो ते 10-12 मिनटा 15 मिनटा च तुसी एयरपोर्ट ते पहुंच जाओ। रेंट कल तो तुसी कर लो, एक बेडरूम अपार्टमेंट डंडास अते इजलिंगटन ते है, तुसी नंबर लिख लो राइट वे 416-786-7211 416-786-7211 416-786-7211 एक बेडरूम अपार्टमेंट फॉर रेंट डंडास एंड इजलिंगटन, भावे कल तो रेंट ते ले लो 416-786-7211 दे उते फटाफट कॉल करो। जे थोड़ा एसी नहीं काम कर रहा, फरनेस खराब है, एसी ते फरनेस दोनों नवे लवाओ ते $1800 तक दा रीबेट पाओ, ठीक है ना, $1800 थोड़ी जेब च वापस आ जाओ, नवा फरनेस नवा एसी नाले विद वारंटी, लेनेक्स दे ऑथराइज डीलर ने, ग्लोबल कंफर्ट एयर दे तेजपाल भाजी 905-790-9080 905-790-9080 नंबर है 905-790-9080 2825 हेलो
1: हेलो भाई सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल भाई जी, की हाल है?
1: है ठीक ठाक, किदा
0: बहुत वधिया, की बनदा?
1: बस 401 ईस्ट पे जा रहे हैं टोरंटो
0: नू। ओ क्या बात है, 401 ईस्ट ते है, 401 ते क्या लो कि अद्धी जिंदगी लंघ गई।
1: गड्डियां बहुत गड्डियां पेनियां,
0: ਗੱਡੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ?
1: ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ।
0: ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ?
1: ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 2004 ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ, 2004 ਤੋਂ
0: ਸੋ ਹੋ ਗਈ 22 ਸਾਲ।
1: ਹਾਂ ਹਾਂ,
0: ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਰੋਡ ਤੇ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: सफर सांचा विरसा गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां ना लबरेज महका दी सौगात वंडदा सांचा विरसा
2: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस डे पर चार ते पसार ले संपर्क करो
1: सांचा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: 7997877sofastudio.ca. थैंक यू जी।
1: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन, 9057900560, 6 Marconi Code, Bolton, 9059519394. Stephen Furniture ki dhamakedar festival season sale.
2: पाजी अज करे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ करे नहीं बन पाउना।
3: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वाद ले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
2: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्ट जागो अते वेडिंग ले आज ही केटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस। ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया,
3: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
2: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA। कॉल करो
4: 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 4 6 4 7 8 2 5 5 2 9 847-5297-647-8355294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: शह पर लगेगी नवे पुराने गीतां दी
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां।
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार।
1: बिजनेस दी प्रमोशन ले आज ही कॉल करो 416-917-7063 ते 416-917-7763।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशन तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन।

0: रात हमें छड़ देनी है। पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए ओई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने। मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905 874 98

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: मामा इस बार मैं भी कृष्णा मनूंगा
2: और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी।
3: अच्छा जी तो ठीक है इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट इन पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
0: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

0: ना हाजन है सर, वेलकम टू द शो।
1: थैंक यू साहब, की हाल?
0: बहुत बढ़िया वीरे, बहुत बढ़िया। तुम सुनाओ।
1: मैं तो वैसे ऑफ दी एयर ही गल कर दी थोड़े नाल, तुसी एयर ते पा दिता ते चलो इसी बहाने सारिया नु फादर्स डे दियां वधाइयां दे दिंदे आ।
0: महाराज फादर्स डे पहला ना फादर बनना, फिर फादर दियां जिम्मेवारियां निभाउणियां, बच्चियां दी परवरिश करनी, इट्स अ बिग थिंग।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ बिग थिंग। सारिया नु एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। मैं दरअसल एक खुशी की गल थोड़े साझी करनी सी।
0: प्लीज।
1: काफी लोकी साडे दलजीत दे फैन ने। अज ही सवेरे खबर आई है कि सिटी ऑफ लॉस एंजलस ने एक दिन साल विच रख दिता दलजीत दसांझ डे।
0: या जनवरी 6,
1: इतनी वड्डी गल है। ते यही मैं थोड़े नाल साझी करनी सी ऑफ द लाइन। मैं कहा भई जे तुसी साझी करनी दर्शकों नाल तां कर लो, हुण तां हो गई है।
0: पंजाबी छा गए ओए, लॉस एंजलस 6 जनवरी 2027 नूं दलजीत दसांझ दा दिन ऐलानिया गया। क्या बात है, थैंक यू वीरे, गुड लक।
1: थैंक यू।
0: ऑलराइट ऑलराइट
2: जितेंद्र जी। यस सर। देव भाजी, सब तो पहले जो आप गलबात करिए, एक फार्म हाउस सेल से लाया आ, यह जी इनफॉर्मेशन आ बहुत इंपॉर्टेंट है। यह फार्म हाउस मेफील्ड 410 तो सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव के उपर है, कैलटन के लोकेटेड है, हाईवे 10 तो सिर्फ 1.5 मिनट की ड्राइव के उपर है। यह जो फार्म हाउस है ये लगभग 1.25 एकड़ के लॉट के उत्ते बनया हुआ है, 200 फुट बाय 250 फुट लॉट है। यह जो फार्म हाउस है कस्टम बिल्ट कार बनया है, जिसे 3 कार गराज ने, 15-20 गड्डियां की पार्किंग है। प्लस खास गल की है, इस फार्म हाउस के 12 फुट सीलिंग मेन एंटर के उपर, 14 फुट की सीलिंग हैगी किचन की, 14 फुट की सीलिंग हैगी फैमिली रूम की। बड़ा खूबसूरत फार्म हाउस बनया हुआ है, हरेक बैडरूम के नाल वाशरूम का एक्सेस है, लिविंग फैमिली डायनिंग ब्रेकफास्ट एरिया सारे सेपरेट ने। बेसमेंट दे भाजी आलमोस्ट 50-60% फिनिश की है उन्हें।
0: अच्छा।
2: वो थिएटर बनता दी भाजी, बेसमेंट 2 बेडरूम बनते हैं, प्लस बेसमेंट सोना रूम बन सकता है, प्लस बेसमेंट जिम बन सकता है, प्लस पूल टेबल दे एक्सेस ऑलरेडी कढ़े पए ने, वॉकआउट बेसमेंट है दी भाजी।
0: अच्छा।
2: फुली अपग्रेड यह प्रॉपर्टी है, कैलटन लोकेटेड है। जे साडा कोई भी स्रोता ब्रैम्पटन तो बहर मूव होना चाहता हो, गड्डिया का पार्किंग का इशू पै रहा है, तां भी कोई चक्कर नहीं, 20-25 गड्डिया पार्क करो। 3 कार गराज ने, कस्टम बिल्ट मकान बनया हुआ है, हाई एंड का काम करवाया हुआ है, बिल्ट इन अपलायंसिस पे हुए ने। जे तुसी इदां दा फार्म अपने लिए लभ रहे हो, कोई तुहानू जाके सिंगल पैसा लाउणा नहीं पैना। नंबर साडा 416-265-22, 416-265-22 ते कॉल कर लो।
0: रानी गायका नू बिना स्लीवलेस ड्रेस पहनण ते 74 कोड़ियां दी सजा। ना होए ना, ना करो जालमो, ना करो। ये 2 साल लई देश छड्डण ते भी पाबंदी ला दी, 24 विच बिना हिजाब ते उन्हें गाना गाया सी, फिर की हो गया? 74 कोड़े एक औरत दे बंदे मारने, किसे नूं शर्म नहीं आउंदी? फादर्स डे ते ग्रैंड फर्नीचर ते जबरदस्त सेल आई आ। सुख साहब, वेलकम टू द शो।
2: हां जी, इधर जी।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया। टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 289-801-0566। नोबेल फ्रेश फूड।

0: आ चुके हूँ।
1: देखो मैं थोड़ी जी आई हूँ, काफी सारी आ रही है। वो मेरा थोड़ा जो हौसला बढ़ गया ना।
0: ओके
1: मेरा बेसिकली जेड़ा मेरा ड्रीम सीगा मेरा है प्लेबैक दा सीगा।
0: ओके
1: मैं कभी सोचा नहीं सीगा कैमरे ते मैनू आन दा शौक नहीं सीगा। बट की हुंदा कि जदों तुसी फिर प्रोफेशनल लाइन दे विच आ ही जांदे हो ते फिर ये चीजा सुनन नू मिलदियां कि गाना बहुत वड्डा है। बहुत सारे गाने मैं तुहानू दस दवां कि मैं 250 प्लस गाने गा चुकी हुई हां। आई थिंक ज्यादा ही होणगे 300 तक होणगे, जिन्हां दे विचों 70% फिल्मां दे गाने होणगे। अजकल डुएट का काफी ट्रेंड है।
0: बिल्कुल जी।
1: तुसी इको जहे भी गाना सुनिया होगा। आप तड़के लड़के आथने इको जहे।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: उदां दे भी गाने
0: सज्जन अदीप दे नाल।
1: जी जी
0: सज्जन अदीप भी तियां दे विच पार्टिसिपेट कर चुके।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी
1: क्या बात है क्या बात। सो इस तरीके नाल ना जो तुहानू ए चीजा सुनन नू मिलदियां होंदियां कि तुहाडी तुहानू रिकगनाइजेशन ओ चीज दी नहीं मिली। कई बार ऐदां लगदा हुंदा कि जिहड़ा आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे उन्हों ही लोकी मनदे कि उन्हां ने गाया। फिर मैनू लगदा हुंदा कि थोड़ा सोशल मीडिया ते स्ट्रोंग होना पैंदा है, सोशल मीडिया दा जमाना है। बट आस्ता आस्ता मैं आपके गाने दे विच फीचरिंग भी कर रही हां, फिल्मां भी कर रही हां। सो सारा सारी चीजा हौली हौली हुण
2: मैं तुहानू पता जब तुसीं फिल्मां च आ गए सारे पिछे छड्ड देना। नहीं नहीं तुहाडे जदों तुसीं फिल्मां च आ के देखोगे तुहाडी इन्नी वधिया आवाज है, इन्ने 250 गाना तुसीं गाया। मेरे लगदा नहीं किसी भी एक्ट्रेस ने जां किसी एक्टर ने जिहड़े अज हीरो भी ने उन्हां ने इन्ने गाने गाए होणगे।
1: चलो मेरी खुशकिस्मती है, ब्लेस्ड।
2: तुहाडी फिल्म कोई भी आई सानूं दसो, असीं इत्थे पूरी प्रमोट करांगे।
1: बिल्कुल,
2: क्यों बिल्कुल। मैं बिचाले बैठा सांझा पंजाब, इधर नासर जी बैठे ने, इधर शर्मा जी बैठे ने।
0: पहुंचो
2: टिकटां थोड़ियां बाकी ने। सुखी भाजी हाल छोटा पै जाना,
0: चंगी गल
2: है। लोकेशन बड़ी
3: वधिया,
2: पूरा सेंटर च
0: है। और देखो पार्किंग दी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी पार्किंग है, पार्किंग बिल्कुल फ्री हैगी है। और इवन साडे एक लिसनर कल दस के गए सी कि 11 नंबर बस भी उत्थे आउंदी है।
2: हां जी
0: जे तुसीं सीधे स्टील दे हां ब्रम्पटन तो आ रहे हो जां एटोबिको तो आ रहे हो, जिहड़ी स्टील दे उपर बस जा रही है ओह 11 नंबर च आ जाओ ते उत्ते उतर के सामने चले जाओ ते अंदर खाण पीण दा बड़ा प्रबंध है, शॉपिंग दा बहुत ज्यादा ओहदे विच
2: इनाम भी जितणगे साडे भैणा,
0: बहुत बहुत इनाम, बहुत कुछ है जी। एयरलाइन दीआं टिकट्स है, सोने दीआं रिंग्स ने, बिस्किट ने सोने दे, और सूट अनेकां ही ने राणो बुटीक
2: वालों, सूट काफी ने,
0: बहुत सूट ने जी। और टेलीटाइम वालों, इवन टीवी कि नहीं, काफी काफी कुछ जिहड़ा ओहदे उत्थे ड्रा विच होणा, क्योंकि एक दिन लेडीज दा है रल मिल के मनाउण। और दिन रह गए, घंटे ही रह गए थोड़े, ते मैं सारियां लेडीज नूं साडियां मातावां भैणां नूं बेनती करांगा जे हाले तक तुसीं अपनी टिकट नहीं लई ते जरूर जिहड़ी अपनी टिकट तुसीं लै लो। आप ऑनलाइन लै सकदे हो megastarevents.com दे उत्ते, जां फिर तियां दा मेला .com वैबसाइट ते जाओ, उत्थों भी टिकट जरूर तुहानूं मिल सकदी है ते इनफॉर्मेशन सारी दी सारी मिल सकदी है। बाबू जी धन्नवाद,
2: होर वी लाइन लगी सार ते इक वारी फेर बेनती कर दईए भई हुण ये नहीं है भी किसी नूं पुछण दी लोड़।
0: हां जी
2: ठीक है ना, तुसीं अपनी टिकट होल्ड कराओ ते तियां दे मेले ते ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੀਅਰਸਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ।
0: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਂਗੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ 20 ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਅੱਛਾ ਮਾਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜਤੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
1: ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ
0: ਸਾਰੇ
1: ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੜੀ ਬਲੌਰੀ, ਜੁੱਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਪਾਣੀ,
0: ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ
1: ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।
0: ਹਾਂਜੀ

0: 30 to 55 80 30 to 55 80
1: होलसेल क्लब विच कीमता कठोरियां
2: अल्ला नालों में कट
1: ए देखो 13.6 किलो सनस्पन स्ट्रेट कट फ्राइज सिर्फ $33 $99
2: ये तो होर भी कट है
1: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी कट
2: ओए तू किथे जा रही है
1: अपने बिजनेस लाई पैसे बचाओ
3: तो हाडे बिजनेस लाई पैसे बचाना साडा बिजनेस है इसलिए असी कई आइटम्स दी कीमता कट कर रहे हां कोई फीस नहीं और जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो
4: wholesale club whole lot of value
5: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
6: Without fear. Without hate.
7: Akal Murat.
6: Omnipresent.
7: Ajoni Sepam.
6: Immortal.
7: Guru Parsad.
6: Through his grace.
7: Jap.
6: Thou shalt worship the eternal truth.